गोपाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। गोपाल भय भूरे गर्व भव चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी

जग की झूठी यारी इनसे बना लो रिश्तेदारी। साचे मन से कर लो यारी छोड़ दो जग की झूठी यारी इनसे बना लो रिश्तेदारी। तो कटे जिंदगी फिर हो

अब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। तो इन खोनी चट अरे हाँ के इन खोनी चट पकड़।

से उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

हरे जग।

जग तारे भजन करो हरे जगा।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितो नहीं जा रहा, वैसे तो थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
1: है।
2: हाँ,
1: अच्छा अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हैंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करा थे।
1: अरे तो घबरावी वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भाव खो जाऊ तई, और तुम्हें जहाँ लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथी इनके फोन आ जावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आद तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना था लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता दे बे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को, सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
2: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हैंगे, काहे से सोशल मीडिया को अभी जमाना है वो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुनाते हैं और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
1: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे तो।
2: अच्छा।
1: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ तई और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसो स्थान है गो के उते टावर ने कम आऊ तई है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगाऊ थेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
2: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जा कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करा थेंगे आपके रेडियो साथी मनीष
1: और भैया।

0: हमें तो आप चिंता ही हूँ जो हमारा नाम है वर्षा।
1: और साथियों आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल खो।
0: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
1: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
0: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाना है, बैरू भौजी को तो जमानो ही है। वो कहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाती, और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन यही पे बातचीत अपन को करवो जरूरी है। वो तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ो काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काऊ खो बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
1: बिल्कुल सही कही आपने। कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैं दोस्तन से मिलते हैं तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैं, और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दा है गो या कोई को समझा दा है गो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जैसे लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैं कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तब ही अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैं। एक मुहिम जो हमने सोची थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डारबे को जमानो है गो, तो ये पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो, ठीक है जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहते पार्टी अच्छी मनी, सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे कि जो देखत कि कितने एक लाइक मिले और कितने कमेंट मिले। ठीक है
1: सही बात।
0: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें इसे कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनो उपाय कर रहे हैंगे तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें, हो सका थे कुखो एक नई उम्मीद मिलवे नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इके लाने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना और इसे अपन और जिंदा हैंगे अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो है अपन को शुद्ध बिल्कुल एकदम। तो यही से कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे तो उनको खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताएंगे कि यदि पन्नी जानवर खा लेतेंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते है और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते है।
0: अरे नुकसान की नाको मनीष भैया तुम पता का होते ही अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आतन में चिपक जाऊती और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कही है कि बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है कि और ध्यान की बात आई तो अपन वैरव भौजी को सुन लेते हैं वे भी कछु क्या वो चाह रही है पन्नी को रोक लगावे के लाने उनने भी बहुत अच्छा प्रयास करो है गो। तो चलो अपन बैरू भौजी को सुनते हैं लेकिन कछु देर बाद सुनते हैंगे एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरू भौजी को सुनेंगे।

0: आप मनीष भैया, अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है गो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का, कि भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जरूर नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा निकल गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जा, भुनसार है जल्दी आ जाओ, भुनसार है जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जा, हाँ हाँ सोते जाने के दे, तीनों बैठी रहते ही अब हम दो रुक जाओ, फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं आ बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मारेगा, ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जिज्जी, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कलुगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी, देखा होती अब घर में कछू नहीं है, खावे मैं कहाँ करूँ, बताओ मैं कहाँ बना लू, मैं तो पूरी जिंदगी कर रही है,
3: तो उसे तना कछू कर सोते हैं तो फिफ्टे बताने लगा,
2: आओ तुम्हें तो यानी फिफ्टे दिखा रहे, मैं बताओ कछू नहीं है घर में, आज खावे मैं कहाँ बना लू मोड़ी मोड़न खिलाने,
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछू बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे,
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो थको, तू पतो ही है क्या जी से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी भरा भी जात,
2: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चूमे परिरत होंगी,
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाए सब,
2: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे,
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
2: तो हो तो जाते आपका रोज के रोज, मैं बाद में बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ, तुम
3: बेच भी की जरूरत घर चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़े यार बिल्कुल,
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच बेच मिली थी अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
2: तुम्हें पैसा खो रो नहीं क्या,
4: अरे अरे का होगा भाजी काय लगे भौजी घुमा रहे हो, कल कह रहा हूँ तो क्या मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे हो,
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाते तो मूड पे चढ़ाए जाए,
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है क्या, हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल रहे,
2: तो लालाजू मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं खाती, तो अब लालाजू मैं का करूं, मैं का बना लो रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल,
3: देख ले जाए तो केवल बहानों से गिर लड़बे को,
2: कब लड़ी मैं बताऊं कहूं लड़ी, आज ही तो लड़ी हो,
3: अब कैसे ठीक पे बता रही, देख लेते हैं देख
4: लेते शांत हो जाते हैं, काय लगी भज्जा ने तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेंटा तो जरूर है आदमी, अब
2: हाउ सब रे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में, तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी,
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा और वो,
2: हाँ वो यान तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो जने जुड़ गए होंगे, अब मैं को है वो पिछले भी,
4: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को उसे नहीं मिल रहा जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी में सुना लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए,
2: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ, मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी,
3: हाँ मुझे तो पता है कि घूम भी जात लालाजू के संग में,

0: शांत रह गए, अगर रोई गाय अगर मुझे पतो चलगाओ फिर मैं शाम के बताऊ तुम्हें।
1: और मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, सो मुझे काकन ने चार बातें करके।
0: ठीक है लाला जी तो है, सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े।
1: लाला जी देख लो तुमने अपने भज्जा को, जी है इनके हाल।
2: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो, तना तुम शांत हो जाओ करे, भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
1: हाँ तुम हो सो तुम हम डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजारे जा रही थी। हाँ
2: बाजार जाने?
1: हाँ
2: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी से दोहरा भगत आओ तेरे रोटी नहीं खा पाई।
1: कल भी जा रहे थे, मुझे तो सब्जी ले भी जाना लाला जी, चलो मैं तुम्हारी संगे।
2: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को, वह धनु कह रही थी कि वो चून बढ़ा गो तो एक बोरी ले आने, तो चून मुनो वह तनक मसाले ले आने थे।
1: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी तक। ले लो लाला जी तुम ले लो, हम ले तो सब्जी।
2: अब भाजी मैं बगल की वापस हट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक,
3: हाँ मसाले लेने तो तनक
2: वो लेने तो आटो लेने तो
1: ले आओ। हाँ ले आओ ले आओ, और मैं लाए ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी तो क्यों का भाव दई। अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू, ले डाल दू।
2: अरे भज्जा जल्दी करवा तनक भाजी, और हमें चेक चेक करने लगे का टेम का, दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे? अरे पन्नियाने में दे दो, तुमसे कितनी दार कही अब कौन घर से हम हमेशा झूले लिया है, पन्नियाने में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ, जल्दी रख दो ले जो पैसा अपने। चलो भाजी ले ले हमने सब्जी।
1: का कह रहे लाला जी अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने?
2: अरे लेब गए मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
1: का लेब गए?
2: हाँ लेब गए।
1: अच्छा हाँ, और काय में रख लो सामान?
2: अब जो पन्नियाने में रख लो काय में?
1: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपने जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को, मैंने समझाई थी तुम्हें।
2: अरे भौजी क्या करूँ ख्याल नहीं रहता, क्या जब घर से आते ना जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
1: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कोई कर भी वालों नहीं है, बताओ जब तुम ही निकाल को वो नहीं कर रहे। अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। ये बाद में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
2: जा तो यानी सांसी कह रही, तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में, जब भी आऊँ तो झूला ले गए।
1: हाँ तो लाला जी अब चलो चलेंगे, तो फिर ब्लैक टाइम होगा कार के, मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े, सो दिमाग के सो खराब है, वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
2: अब तो भाई जी अब जा बात छोड़ते हैं, लड़की ना आपते शांत रहिए घर, हल्ला ना करिए।
1: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में,
2: अगली बार से तो झूला ही ले आऊ मैं।
4: मजा ही आ गया रामधई, बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं यूं, और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैं, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
5: सही कही कैसे उनने हमें बेरू भौजी के जा नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी।
4: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
5: महिला खो जासन जरूरी है।
4: हाँ।
5: यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे।
4: हाँ।
5: या तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग, जब तक वे यहाँ
4: बैठे सुबह उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका,
5: तो वो
4: आजकल मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे हैं, अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब वे आवे जब वही पैसा खे छुए जब हम कछु सामान ले। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
5: सही वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छे माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती हैगी और साथ में आपसी जो बातचीत होती हैगी बात से अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम क्या वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अभी भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी, और सब्जी की तो बात छोड़ो वे उनके पास पैसा भी नहीं रहतेंगे, बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं, तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
4: तो देखो हम ही में जाके वो चाहते हैं कि बचत जानी कैसा कत आपके केवल महिलाएं के लाना जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सब के लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत हो देगी। हाँ, तो दूसरी बात का सीखी,
5: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी,
4: बिल्कुल है।
5: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्हों
4: हाँ।
5: कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैं अपने घर में, तो वहां में कहो तो एक तो बचत होते है, बचत कैसी बचत होते है, जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सके थे, तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके या बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसियों को खर्चा चलेगा, अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
4: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा लाई, धना लगा लाए और काकेतई
5: भटा
4: भटा हाँ भटा लगा लाए और मैं उई में एक दो गोभी लगा लो, धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे, इतना फायदा दे, फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजिया, ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घर की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
5: बिल्कुल सही,
4: ताकि बाजार में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कत नहीं है कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
5: सही कहा,
4: तो ऐसो अपन को महसूस भी हो लगे है गो, तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सका थो।
5: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई है थी और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो, खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काय से पॉलीथीन को इस्तेमाल करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है वो।
4: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढूर बछे जो फिरत रहते हैं बेचारे देखो भी तो काऊ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदों में ला सामान सुबह पन्नी समेत खा जाता है कि भी गठान तो खुल नहीं सका थेगी,
5: सही बात।
4: तो एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी में कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेगे तो एक तो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे, तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बचे रोज आउ थे वो और इतना ही वो खाबे के लाने खड़ो होते ही, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो और जी में वो डूर बचे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है वो तो खाबे की वो है भूख है पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिलेगा जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजार जाते तो कहते लिया बेटा वो थैला दीजिए बाजार हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है वो तीन से पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रहे थे, तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने है ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले गो।
5: बिल्कुल सही की वैसा, और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी, और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताए कैसे हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल संजावे को, तो उनने का सीखो है गो बे हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
4: साथियों हमारा नंबर है 92-19-20-77-49।
5: और साथियों आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने का सीखो है गो, तो जरूर शामिल हो हमारे कार्यक्रम में, अपने सुझाव जरूर दोगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छा लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं, तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
4: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
3: शुभ कल। बदलती जलवायु के

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
0: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
1: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व तो नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं दूसरा गुण, आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
0: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
1: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा।

0: आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं। इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं, इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए, जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं

0: वही व्यक्ति माफी मांगता है और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
0: ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है, जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल।

0: हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: श्रोताओं जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
1: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात,
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपके पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, को बोल रही?
2: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
1: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हूँ।
2: दीदी का हमें एक सुना दो, एक गीत।
1: हाँ, कौन सा सुना दे?
2: बिल्कुल, मैं चल जाती हूँ तुम्हारी नगर जावे भाई दीवानी बारी हमारी जावे।
1: संध्या सरगम को है वो? हाँ बिल्कुल, यानी नो ना, हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
2: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
1: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोग भी। ठीक है
2: दीदी, सुना।

शाम के बातें बात।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में का हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है,
1: हाँ
0: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: वो बोल रही
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक पसंद है आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तो मज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगे और आनो। हाँ वही लोग गीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग गीत।
0: ठीक है, नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को। और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी की संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात कर हैं और उनकी नस्ल पे बात कर हैं। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन ले, फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राज्य। हाँ।

लाओ मोए कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय

करने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जहां पर ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जी, गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

अपनी अपनी आग में।

काली लाल श्रृंगार है, श्रृंगार बहुत से देखे हैं, सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे,

साल की बात है के हर पावन हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल और लाल लाल चुकटन में लाल लाल चुकटन में ककरा है लाल लाल लागो है।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

फौजी सजी मोर मोटर सी कर सोला सिंगार मने दईन भोरा भौजी सजी मोर मोटर सी कर सोला सिंगार मन दईन भोरा हाँ भौजी सजी मोर

0: दोस्तों, भौजी सजी मोर मोटर सी करसो लव सिंगार मनोरंजन रे भोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहिरवार जी। सो आओ दोस्तों फैशन सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।
1: अरे जागोरी बुंदे लखंड की, जागोरी बुंदे लखंड की, अजब

कंगन में झूले गोरी के गालन में कंद फूल कानन में झूले गोरी के गालन खोचू में नैनन कंजरा औठन लाली चाल समा के दान राली गली में सोहे हार गली में सोहे हार।

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

लेके कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहिरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में यही बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को दो जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। कैसे हैं आप,
1: सुबुदिनी
0: कैसे हैं
1: खान।
0: आप?
1: मैं मजे में, आपके सुरक्षित सर। आप कैसे
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नवरात्रि चालू हो गई है कल से।
1: सर? जी सर, जी सर। नवरात्रि का आपको, आप सब परिवार को, सुनने वाले मेरे चाचे को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर। बधाई।

0: रेडियो बुंदेलखंड की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 9 दिन माता रानी की कृपा खूब सारी बनी रहे हमारे श्रोताओं पर, आप पर। और बताइए क्या हो रहा है?
1: बस अभी तो कुछ नहीं सर, आराम कर रहे हैं सर, अभी तो खेत में।
0: अच्छा
1: जी सर, जो धूप पड़ रही सर, एक साल को बरसात अच्छी नहीं हुई सर, महाराष्ट्र के अंदर और दुष्काल पड़ा है सर, दुष्काल पुकार है सर।

0: एक बार बात कर रहे सर।
1: अच्छा
0: जी सर, जी सर, कार्यक्रम सुन रहे सर आपने जो
1: चलिए,
0: दिल्ली खंड
1: बड़ी
0: के।
1: बढ़िया है, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और आशा करेंगे आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा।
0: जी
1: आज क्या फरमाइश है आपकी, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
0: तो नवरात्रि का आपने तो संभाषण है, शरीर गानों संगमी भी गाना सुनना है यार।
1: जी
0: फिल्म का नाम है आशा और गाने की बोले तुझे, तूने मुझे बुलाया शेरवाली,
1: जी
0: मैं आया शेरवाली, गाना सुना दे सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश का ये गाना जरूर बचाएंगे। और आप बताइए, और आज आपका दिन कैसा जा रहा है, कैसा, क्या शुरुआत हुई दिन की आज आपकी?
0: आज भी सर आज तक भी नहीं जा रहे सर, अभी तो किसान भाई महाराष्ट्र के तो नाराज है,
1: जी
0: और भी तो नवरात्रि के दिन में अभी थोड़ा सा खुश है, कारण 9 दिन जो कैसे बीत जाएंगे हमें आशा करते सर।
1: जी जी जी जी तो
0: जी सर
1: चलिए, आपकी फरमाइश पे हम बजाने वाले हैं तूने मुझे बुलाया शेरावाली, ये आशा पिक्चर का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। तो बढ़ते हैं गीत की ओर, चलें?
0: चलो, धन्यवाद सर,
1: चलिए
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद, जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड के साथ।
0: हाँ, बहुत धन्यवाद सर।

0: कॉल है तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश भैया, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: और बताइए क्या चल रहा है, कहाँ पर हैं? हेलो,
1: हेलो,
0: क्या चल रहा है भैया?
1: अभी तो घर में है भैया, खेत से आए हैं।
0: अच्छा, क्या
1: हाँ
0: खेती में
1: जी,
0: क्या चल रहा था, मूंगफली वगैरह?
1: टाइम में कचरा निराई का काम
0: अच्छा,
1: जी।
0: और मौसम कैसा क्या है वहां पर?
1: मौसम तो ये है भैया, धूप खिला हुआ है
0: जी
1: और थोड़ी उमस भी है, ठंडकता अभी नहीं आया है।
0: अभी, हाँ वही ना, धूप वगैरह ज्यादा है और गर्मी भी अच्छी खासी दिख रही है, अभी उमस वगैरह है।
1: जी।
0: हाँ, और पसीना तो ऐसे क्या बताएं कि भपका टाइप पड़ रहा है ना, जैसे अपन बोलते हैं कि भपका पड़ रहा हो।
1: जी।
0: हाँ, अब आ भी बारी है लेकिन सर्दियां भी बारी हैंगी, गर्मी
1: हाँ
0: वैसे तो पहले
1: जी
0: सही
1: जी
0: टाइम से चालू हो जाती तो ठंड पड़ रही,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अब कहाँ,
1: जी
0: जलवायु परिवर्तन चल रहा हो।
1: हाँ जी,
0: हाँ, तो योगेश भैया आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: अवतार मूवी से सुनवा देंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
0: चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बिल्कुल,
1: जी
0: नवरात्रि है तो माता तो जरूर बुलाएंगी, और हमें भी
1: जी
0: माता रानी की सेवा करना है। ये 9 दिन उन्होंने
1: जी
0: हमें सौभाग्य दिया है कि हम माता रानी की सेवा करें, तो
1: जी
0: योगेश भैया की फरमाइश पे चलते हैं हम अगले गाने की ओर। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। राजेश
1: जी
0: खन्ना इस मूवी के अभिनेता हैं, अवतार पिक्चर का ये गाना है। चलिए
1: जी
0: गाने की ओर चलते हैं, धन्यवाद भैया जुड़ने के
1: धन्यवाद।
0: लिए। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड।

0: चुके हैं एक और कॉलर, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, बुंदेलखंड ओरछा, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार शारदा प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि हमारे हर सहैया भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते रहें और हम श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन होता रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं ये नवरात्रि माँ दुर्गा मातेश्वरी आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें कराएं, अच्छा अच्छा आशीर्वाद दें आप सभी को और हमारे सभी श्रोताओं को। और बताइए भैया क्या चल रहा है?
1: जी, शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, शारदीय नवरात्रि में माँ जगदम्बे की स्थापना हो चुकी है, घट स्थापना हो चुकी है, ज्वारे बोए जा चुके हैं और आरती स्तुति वंदना माता रानी की हो रही है। भक्त लोग आस्था श्रद्धा पूर्वक व्रत भी रखा है, उपवास भी कर रहे हैं और माता रानी की आराधना स्तुति वंदना भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आप हैं का व्रत हैं, आप उपास हैं?
1: ना, हम उपास नहीं रहते हैं लेकिन माता रानी की भक्ति वंदना स्तुति करते हैं।
0: अच्छा, और सब बढ़िया है
1: जी? आपको बुंदेलखंड ओरछा परिवार को, सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: आपको भी आसपास का मातेश्वरी बैठा ले हूँ दर पे का?
1: हाँ, आसपास तो हमारे कॉलोनी में एक मंदिर है, उस मंदिर प्रांगण में बहुत सारे देवी देवताओं विराजमान हैं, भोले शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, माता रानी जी हैं और बाकी बिहारी तो यहाँ के है ही हैं।
0: बहुत बढ़िया, आप उनकी धरती से, पावन धरती से बोल रहे हैं, देव भूमि से बोल रहे हैं आप, और पंडाल तो बहुत सारे सजे धरे हुए ही होते हैं।
1: हाँ, पंडाल तो सीधी तरफ काफी जगह जगह लगे हुए हैं और माता रानी की आराधना स्थिति बनना हो रही है, यथाशक्ति आस्था श्रद्धा अनुसार सब लोग अपने अपने भक्त प्रदर्शित करते हैं।
0: तो बस यही है कि आशा मातेश्वरी से कि हमारे श्रोताओं को अच्छो अच्छो आशीर्वाद, खूब कृपा करवें अपनी और हमारे श्रोता बढ़िया सब स्वस्थ रहें, सब मंगल में रहें और उनकी सेवा कर में जी नौ दना उन्हें अपने दय है, अपन को सौभाग्य प्राप्त करो है वो के अपन लोग उनकी सेवा कर।
1: जी जी, धन्यवाद। तो आज जी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेली में एक बहुत ही अच्छा भक्त गीत

0: रानी का है, पार्वती जी शामिल है, भोले बाबा भी हैं, और आप तो समझ गए होंगे मेरे गीत का तात्पर्य कि फिल्म का नाम है हनुमान अंश।
1: हमें आपकी पता है, आपको पसंदीदा गीत पता है हमें, हम आपके
0: जब जब पार्वती जीत कर बैठी, पार्वती पार्वती समझाने आए सप्तऋषि सप्तऋषि,
1: वही वही चल रहा हो सब रहे।
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रचलित गीत है और हमारे बुंदेली मतलब बोली में ये गीत है, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: तो बड़ा देंगे अपन और गीत की तरफ, सुनाउते हैं आपको आपको पसंदीदा गीत पार्वती को, चले भर शारदा
0: जी। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण,
1: जय श्री कृष्ण। तो बढ़ते हैं श्रोताओं गीत की।

0: आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर संतोष कुमार जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्कार नमस्कार संतोष कुमार जी, कैसे हैं आप? हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। और कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है सर सभी के लिए।
0: जी जी बिल्कुल, फरमाइए
1: जी। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी या नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते या नमो नमः। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है सर, आप को तमाम दर्शकों को और सुनने वाले सभी साथियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: जी जी जी, हमारे पूरे टीम बुंदेलखंड रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम की टीम और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। मंगलमय हूँ आपके ये 9 दिन, माता रानी आप पर खूब कृपा करें। और बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं तो अच्छा हूँ सर, बस आपके कार्यक्रम में कॉल लगा रहा था, कॉल लग गया, बहुत ही अच्छा लगा। और माइक्रोफोन पर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी इससे पहले, और अब शायद हमारी और आपकी बातें बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ प्रसारित हो रही होगी
0: जी। अब आशा है कि अब ठीक हो गया होगा, अब आपको आवाज क्लियर पहुंच रही होगी। हमारी थोड़ा क्या टेक्निकल इश्यू हो जाता है, कहीं इधर उधर घूम जाते हैं तार वगैरह।
1: जी बिल्कुल सर।
0: और बताइए कैसे क्या है?
1: बिल्कुल सर, इस समय आस्था का महापर्व भी समय चल रहा है सर, और मैं बताऊं आपसे शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन है, और हमारी स्थित माँ विजयदशमी जी का भव्य मंदिर है, जो कि माँ का काली स्वरूप में बिल्कुल विराजमान है माँ आदि शक्ति, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उमरिया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और यहाँ पर माँ का जो स्वरूप है काली स्वरूप में है, लेकिन सभी जगह माँ की जीवा निकली हुई होती है, लेकिन यहाँ माँ मंद मंद मुस्कुराते हुए सादे सिंपल स्वरूप में बिल्कुल दर्शन देती है, और भव्य आकर्षण का केंद्र है उमरिया मध्य प्रदेश माँ विजयदशमी मंदिर।
0: अच्छा, तो हम आएंगे एक आध बार आपके यहाँ पे मातेश्वरी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने हम आए, अपनी टीम के संग आएंगे, बिल्कुल आपसे भी मुलाकात हुई और खासकर मातेश्वरी के भी दर्शन हुए, उनको आशीर्वाद लेंगे। और सब बढ़िया है? अबे तो जगह जगह पंडाल बने हुए हैं अपने ते।
1: हाँ बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आस्था का नगरी होता है मैहर, जो कि माँ शारदा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन शारदा माता जी का भव्य स्वरूप बना हुआ है, ऊंची टेकरी पर होता है, लेकिन यहाँ जो माँ विजयदशमी जी का मंदिर है यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, और जवा जलूस भी निकाले जाते हैं, जो कलश होते हैं सर वो लाखों की तादाद में होते हैं, 25 से 30 हजार जवारे जलूस कलश विसर्जन होते हैं नवमी के दिन।
0: अच्छा, अवे होते ऐसा कछु तो नहीं है कि मतलब के कम हो गई हूँ, जैसे अपने पुरानों कल्चर चला था तो के पहले बहुत बात से धूमधाम से जवारे बत्ते और सब कछु हो, तो अब वैसा ही सब कछु है वो थे कि कम हो जा रही धीरे धीरे चीजें?
1: नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा कलाकृति होते हैं खास करके, जैसे बुंदेलखंड अपने आप में पहचान रखता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है अपने आदिवासी जन समुदाय को लिए हुए चलता है, तो ढोल नगाड़े की ताश हमेशा होती है, और भक्ति रस हमेशा शाम को 7 बजे आरती के बाद जो हमारे भजन कीर्तन वाले मंडली वाले भैया होते हैं वो हमेशा ताल पर संगत लगाते हैं, और भगत जिस प्रकार से होता है तो मानो चारों ओर जय जयकारे ही लगते हैं हमेशा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आशा करें कि सब कछु अच्छो रवे होते कछु, मतलब ऐसा नहीं अपन को कहे, अपन को भी अपने कल्चर से अपनी संस्कृति से जुड़ो भी बहुत जरूरी है, वो अपन को अलग नहीं करने बिल्कुल, कि अपन कहे की समय बढ़त जा रहा हो, मॉडर्न हो जा रहा हो, तो अपन को भी बात चीजें नहीं भूलने जो अपनी हती, कहे की बिलास चीजें अभी अभी अपन देख रहे कि कितनी चीजें विलुप्त हो जा रही खत्म ही हो जा रही। बिल्कुल
1: जी बिल्कुल सर, और इसी बात में माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, डीजे पर सख्ती पाबंदी लगाई गई है, और जो लोक धुन है उनको ही हमेशा, क्योंकि लोग जो धुन होते हैं जो ढोलक मंजीरे होते हैं वो ज्यादा शोरगुल नहीं करते हैं, तो ऐसे में डीजे को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, और जगह जगह शांतिपूर्ण भव्य तरीकों से पंडाल को सजाया गया है, और माता रानी का आरती भजन सुबह शाम होते रहते हैं सर, तो बहुत ही अच्छा आकर्षण और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे होते हैं सब पे, सभी पे हमारे श्रोतान पे सब पे आशीर्वाद बनावे जी। 9 दिना उनकी लाने बहुत अच्छी आवे। और अब संतोष कुमार जी बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ, तो आज बताओ आज आपकी क्या फरमाइश है, हम आपकी फरमाइश को गाना बजाएं, जैसे फरमाइश आपकी हुई है गाना हमारे हुई है, बताइए
1: जी सर। सभी के लिए बस एक गाना प्रस्तुत रहेगा, मूवी का नाम है जय माँ वैष्णो देवी, गाना बहुत ही प्यारा सा है सर, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया।
0: जी जी जी, हम आपकी फरमाइश का ये गाना जरूर बजाते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। धन्यवाद संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड। मैं हूँ आपका आरजे हर्ष।

0: राम राम भैया।
1: राम राम राजेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया भैया, राजेश यादव बस स्टैंड लोहेड़ी जिला महोबा से बोल रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है राजेश यादव जी। कैसा लग रहा हो कार्यक्रम?
0: बढ़िया लग रहा भैया, जय माता की। अपना सब सुनने वाले हैं।
1: जय माता की, जय माता की। और आपको और आपके परिवार को भी हमारी बुंदेलखंड 90.4 की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और बहुत अच्छे आवे, बहुत कछु अच्छा हुए आपके संगे। माता रानी को आशीर्वाद बनो रहे, कृपा होवे। और बताइए का चल लो?
0: दुकान में बैठे थे हम भैया, से बात कर लें।
1: अच्छा, दुकान पे आ गए? क्या बजे? 8 बजे आ जाओ तो अपन। तो
0: आज बजा समूह कितना बजा लगा? सुबह से आए थे।
1: अच्छा,
0: तो लेट हो गया, 9-10 बजे आप आउट आज थोड़ी।
1: अच्छा, और कोको है दुकान पे? अकेले बैठेगा?
0: हाँ, काफी हुए चौरा और काफी हुए बनी है।
1: अच्छा
0: हाँ भाई,
1: और कैसो का? धूप अच्छी निकली उज्जे?
0: हाँ, तेज धूप है, ठंडी है, ठंडी हवा चल रही।
1: अच्छा होता है, हवा ठंडी चल रही है तो बिल्कुल नहीं चल रही। चलो बढ़िया है, वो अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा को आनंद लो आप फिर। और आज सुनो, चाहो आप बताओ कौन सा?
0: माता जी को भजन सुनने।
1: अच्छा,
0: कौन सा? छोड़ के ना जाऊंगा मैं मैया, कभी तो नैया पार करोगी।
1: अच्छा, आवाज में बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पसंद का गीत बजाएंगे। और जुड़े रहो, और अच्छो आपको जैसो भी कार्यक्रम लगे आप हमें मैसेज करो चाहे फोन करो। अपनों जो भैया अपन को कैसो का लगो, हम कैसे लग रहा है आपको, आवाज कैसी का आ रही?
0: बढ़िया भैया,
1: आवाज सही पहुंच रही?
0: बढ़िया आ रही आवाज, थोड़ी कटक।
1: तो चलो फिर गीत की ओर बढ़ो जाए।
0: बिल्कुल सुना भैया। राम राम।
1: चलो राम राम, धन्यवाद, जुड़े रहो।

जी भैया, हम रामपुरा से बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत रामपुरा। अपने फरवास कार्यक्रम में हम सुनना चाहेंगे, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। भैया, बढ़िया है। मैं बहुत दिनों से रेडियो बुंदेलखंड को सुनते आ रहा हूँ। रेडियो बुंदेलखंड एक ये है कि मानो इसको सुनते ही एकदम मन एकदम सही हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है एकदम। आप उनकी आवाज तो बहुत अच्छी लगा, जो मैं कि अपने भैया है जो पुरोहित जी भैया, वो क्या नाम उनका, हाँ हर्ष भैया है, ऐसे कि एक आप हैं, जो कि इन लोगों की आवाज ही सुनते ही एक मन खुश हो जाता है। जी।

0: हेलो, नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं
0: जी
1: डॉक्टर
0: मैं
1: साहब?
0: बहुत बढ़िया है सर जी। मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे सर जी।
1: हाँ मोहन सिंह जी, कैसे हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया है सर जी। अभी तो खेत में ही है, बैठे थे। वो सोयाबीन का जो हमारा जो कांटे वाला है जमा कर रहे थे, तो पानी पीने के लिए उतर गए, तो देखना बोल के लगा के तो लग गया सर जी।
1: अच्छा
0: ज्यादा कोशिश भी करनी पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। बोला कार्यक्रम चालू है या नहीं है उसके भी कुछ खबर नहीं है।
1: वही, अब देखो, अब टाइमिंग पे लगाओ आपने, बिल्कुल टाइमिंग होगा सुको। चलो
0: हाँ
1: ठीक
0: जी
1: है।
0: हाँ, वो तो
1: हाँ
0: मालूम है सर जी मेरे को
1: हाँ
0: सब।
1: कैसी
0: मगर
1: का खेती में कैसो का लगा रहा हो आपको?
0: बहुत बढ़िया, अभी ये सोयाबीन की जो कटाई चालू है जमा कर रहे हैं। आप मिशन आएंगे कल, आज नहीं तो कल, उसको निकालने का सोयाबीन घर को ले जाके रखने का। और ये नवरात्रा भी चालू है, तो सुबह शाम पूजा अर्चना होती है, तो
1: जी,
0: बहुत अच्छा माहौल है सर जी, खेत में भी और घर को भी, गए बाद भी गांव में भी।
1: अब मातेश्वरी आ गई धरती पे, तो अब माहौल तो फिर ऐसा ही रहेगा कि सब तरफ भक्ति आस्था वाला।
0: बहुत बहुत
1: हाँ
0: बढ़िया माहौल, अच्छा है सर जी। खेत में रहूं तो भी माहौल अच्छा है, गांव में गए तो भी बहुत बड़े डीजे चल रहे हैं, और हमारी माता रानी कल प्रकट हुई है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल अच्छा बागवान हो गया है मैं
1: अब चारों
0: सर
1: तरफ
0: जी।
1: अब उन्हें उनके गीत सुनने को मिल रहा है, भक्ति आस्था सब जो ही चल रहे हैं, तो नौदना माता जी
0: बिल्कुल
1: की।
0: बिल्कुल, इतने पूछो मत, घर के बाहर निकलो तो उनका ही गजर चालू है।
1: जी
0: और सुबह और शाम 7 बजे 8 बजे जो आरती होती है, आधा घंटा पावन घंटा 1 घंटा बोले भी चलता है, वही हम बैठ के रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। खाने को भी प्रसाद मिलता है, तो
1: जी
0: और भी
1: बिल्कुल,
0: मीठा मीठा लगता है खाने में भी।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम यही उम्मीद करते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड की टीम से कि माता रानी सब पे अपनी असीम कृपा कर रहे, हमारे श्रोता ने पे
0: बिल्कुल
1: पूर्ण
0: बिल्कुल, वो तो करने वाली है, वो तो
1: जी
0: सबको ख्याल रखेगी, वो उसके
1: बिल्कुल।
0: ऊपर ही सब कुछ चल रहा है।
1: हाँ बस उन्हीं पे टको है वो सब, अब बे ही देख रहे हैं, देख रेख में सब बे ही
0: और
1: है।
0: हमारी जो कुछ आशा है माता रानी पे है। जब
1: जी
0: गणपति बापा आए, गणपति बापा चले गए हैं,
1: जी
0: उसमें 11 दिन गए हैं, अभी भी माता रानी आई है, 9 दिन किधर जा रहे हैं तो भी पता नहीं है,
1: अब तो
0: लेकिन जा
1: नौ
0: रहे
1: दिन
0: बहुत
1: बना
0: अच्छे से, इतना
1: नौ दिन
0: मालूम
1: अपन
0: है।
1: तो बैठी हैं, अबे अच्छे से उनकी सेवा कर भी कौन ने, अवसर दो है वो अपन वो हर साल देती हैं कि अपन कम से कम पूरे साल भर में नहीं तो कम से कम 9 दिन तो जी अच्छे से
0: बिल्कुल,
1: कर पाए उनकी।
0: 9 9 दिन आते हैं तो साल भर आए जैसे लगते, याद उनकी
1: हाँ
0: 6 महीने नहीं जाती है, और 6 महीने के बाद और उनकी लगता है कि अब आने वाली है।
1: भाई भाई,
0: छह महीने तो नहीं जाती है,
1: अबे
0: छह महीने
1: अबे
0: के बाद अब गई तो वो और आने की याद आती है।
1: जी, तो जी है कि अबे तो माता रानी को बिठा लेते हैं सब लोग, अपने अपने बढ़िया पंडाल बनाओ सब बिठा लेते हैं, अब जे चली जे हैं फिर कछु।

0: हाँ जी
1: राम जी लौटेंगे फिर बाके बाद का फिर नौ देवी चालू हो जाए जे गर्मियन में चैत की नौ देवी बोला था अपन।
0: हाँ जी, अभी राम जी आएंगे ना दिवाली को। थैंक
1: हाँ राम जी आने अपने तो भगवान सब बढ़िया हैंगे। तो आज आप
0: यू।
1: निकाह फरमाए से आज का सुन वो चाहो अपन।
0: वो जो नरेंद्र चलचला और महेंद्र कपूर की एक आवाज में गीत है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, मैं सुनना चाहता हूँ सर जी।
1: अच्छा राजेश खन्ना है ना मैं तो गीत में।
0: हाँ आवाज है राजेश खन्ना और मेरे ख्याल से जितेंद्र की, दोनों के ऊपर एक। हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: अवतार
0: राजेश खन्ना कौन
1: अवतार
0: पता नहीं
1: पिक्चर
0: सर
1: का
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: गाना
0: पुरानी
1: है,
0: एक फिल्म है।
1: अवतार पिक्चर का ये गाना है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है।
0: थैंक यू, कोई बात नहीं
1: तो
0: सर जी,
1: चलते हैं भैया अपन गीत की ओर। और धन्यवाद मोहन भैया अपन से जुड़वे के लाने और
0: थैंक
1: आज
0: यू,
1: जी
0: धन्यवाद सर जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में तू आकर भूला ईश्वर की डगरिया। देखो कितनों प्यारो जोगी तपन सब जन ने सुनो है ई गीत को, आनंद लो है ई गीत को गा रहे थे भैया राजेंद्र सिंह जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम कविताएं में आप सब जन को जी कविताएं कैसी लगी इन्हें। अब दोस्तों जो कविताएं कार्यक्रम आप सब जन ने सुनो है ई कविता कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।
1: काव्य धारा

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, नेक कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भाजी, तनक हमने कही के आज आराम से बतिया लिए, भाजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके अभी आई थी के नेक तुम मे संगे चलू।
1: तुम्हारे संगे चलू?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो कहे थे हारे के हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे
0: बाद में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहे भौजी, ऐसी क्या बात है, तो ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दूं, मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आऊंगी, लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा ना क्या भी।
0: अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी, ठीक बात है।
0: अच्छा, तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, आज तुम्हारी कैसी हैगी?
1: हाँ, हमारी देखे, हम तो दवाई दे दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा बीबी आप आसों की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी, रासायनिक दवाई यही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तो ही। हाँ। पढ़ भी जाने तो, और खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गांव गाड़ों को काम है तो सब करनी है अब तो ही।
0: हाँ, वो तो ये नहीं है कि लालाजू मैं जा कह रही, तुम कहाँ डाल रहा दिन में, देखो तुझे भटन में कैसे कीरा मीरा सो लग रहा है वो, और का को तो ये नहीं रुखन आने से लग रहा है, कहाँ डाल रहा तुम्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम आई अच्छी हो, जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था ही का, तुम जाने का करा था जो मून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजू, तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आते।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे, मशीन से किंच तू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत तो
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी, तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ, उसमें तो बनाते ही हूँ, वहाँ में कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ, जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में वो चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही
1: और
0: मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही घर बना दवाई बना वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बना थेगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना ली थूंगी।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आई थी यार, देखो
2: चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: ना ये कहो कीड़ा ला, वो कीड़ा के लाने वो जाना वो थो, तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला ली थी, तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा, तो अब तो चला ही नहीं आये तू हार।
0: चलो देखो, अब देखो लालाजू, जो तो लगो मे बैगन और जी, अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।

0: भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
1: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
0: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
1: हाँ तो लालाजू मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घरे बना था अपनी सब।
0: लेकिन भौजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
1: कहा कह रहे लालाजू टपज्जा में लोटा धरे।
0: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तुटे पज्जा में।
1: हाओ लाला जी में मटकन से मैं मटका खाद बना थो।
0: मटका खाद
1: हाओ
0: वह कैसी बना
1: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है। मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
0: हाँ मैंने पढ़ो तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
1: अच्छा
0: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
1: अरे वो तो है ही बना सकते। तो लालाजू अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
0: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
1: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

0: शायद सुना आपने बैरो भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: भैरव भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भैरव भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी, उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी। कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
5: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
5: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
6: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
6: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब। गोबर खाद, जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
6: धीरे धीरे होगा। वो तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और जब गोबर जो मान है गौ माता का जे ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
1: अच्छा, जैविक
6: वो भी
1: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
6: जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला आय,
1: आय बढ़ती है? कैसे
6: आय
1: बढ़ती है?
6: बढ़ती है उससे। मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
1: अच्छा,
6: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया तुम्हारी चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई साहब।
7: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब
7: हमें
1: से उससे को करने से क्या लाभ है?
7: पता नहीं है
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
7: नहीं है जानकारी सर।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
7: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।

माला माल कर देती जा जैविक खेती, माला माल कर देती जा जैविक खेती।

0: पर फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जहाँ हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, सर दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उस

0: अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, क्योंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी, अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर, इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
0: इसके अनेक लाभ हैं, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा,
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का

0: सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं टालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्द ही जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं। Thank you.

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है, सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और पाए भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी हैं ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: गई पनिया दारी उतनी कर धनिया है भरवे गई पनिया दारी उतनी कर धनिया है भरवे गई पनिया दारी उतनी कर धनिया है भरवे गई पनिया दारी उतनी कर धनिया है भरवे गई पनिया
1: गईती का धनिया डारी कितने कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक बणक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता? दोस्तों यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह

की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय। दोस्तों, जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें। खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए। इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है। वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए।

एक तिहाई नत्रजन, स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 4, 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों अब एक क्रम में अपन और कह रहे हैं कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में देत उरानो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय हो गया है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में, यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इविरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को, और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत हुए कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनत हैं इन प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनत हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन के लाने परसन से तरसन लगी।

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया। मैया खोल दो जे द्वार की बरिया।

होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी, होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया।

देखो दोस्तों, ये कितना प्यारा गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कोको लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी के गाय भाई गीत को।